0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापलियो चौदवे के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास की चर्चा सुन रहे हैं। संत पापलियो चौदवे का यह प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्तमान संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि कलिसिया के सामाजिक धर्म शिक्षा इस अभिव्यक्ति की मुहर संत पापा पियूस 12वें द्वारा 1950 में लगाई गई, जबकि इसकी विषय वस्तुओं के ढांचे का स्वरूप सामाजिक शिक्षा के शरीर स्वरूप संत पापलियो 13वें के द्वारा विश्व प्रेरितिक पत्र रेरुम नोवारुम से शुरू हुई। श्रोताओं, रेरुम नोवारुम कलिसिया की सामाजिक धर्म शिक्षा के विकास में एक मील का पत्थर है। यह दस्तावेज हमारे लिए कार्य और कार्यकर्ता के सम्मान को अपने चिंतन के प्रथम पायदान पर रखता है। यह व्यक्ति और किसी परिवार के लिए उचित मजदूरी के अधिकार को सुदृढ़ता प्रदान करता है। यह इस बात को चिन्हित करता है कि व्यक्तियों का एक मूलभूत मूल्य है जो पूंजी और लाभ के पहले आता है। यह व्यक्तिगत संपत्ति के साथ साथ उसकी जरूरी सामाजिक भूमिका का बचाव, मजदूरों के संगठनों का सम्मान और वर्ग संघर्ष की मानसिकता के विकल्प में समाज के अलग अलग हिस्सों के बीच सहयोग के तरीकों का सुझाव देता है। हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि संत पापा पियूस 11वें इस ख्रिस्तीय सामाजिक कार्य को मान्यकारिता महाधिकार पत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। रेरुम नोवारुम कलिसिया के प्राचीन ज्ञान मानव और सामाजिक जीवन से संबंधित है, अपने में एक नया स्वरूप लेता है जो औद्योगिक युग का प्रत्युत्तर देता और सामाजिक धर्म सिद्धांत के रूप में एक प्रथम व्यवस्थित कार्य की रूपरेखा को प्रकट करता है, जिसे आने वाले युगों में आगे विकसित किया जा सके। यद्यपि संत पापा लियो 13वें के द्वारा वर्णित बहुत सी ऐतिहासिक परिस्थितियां परिवर्तित हुई हैं, कम से कम दो विचारों को हम आज भी अत्यधिक महत्वपूर्ण पाते हैं। वित्त या उत्पादन की मानसिकता के ऊपर मानवीय श्रम की प्रधानता, इसके परिणाम स्वरूप शोषण से सबसे अधिक संवेदनशील लोगों और परिवारों पर ध्यान दिया जाता है, और दूसरा सुसमाचार की घोषणा तथा अधिक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के बीच अटूट संबंध। रेरुम नोवारुम इस भांति हमें इस बात की याद दिलाती है कि ऐसा कोई भी सच्चा सुसमाचार की घोषणा नहीं है जो मानवीय समाज की आधारशिला पर प्रभाव न डालती हो। श्रोताओं, संत पापा पियूस 11वें का विश्व पत्र क्वाड्रुजेसिमा आनो 40 वर्ष सन 1931 में रेरुम नोवारुम की 40वीं वर्ष गांठ के अवसर पर प्रकाशित किया गया, जब वैश्विक आर्थिक व्यवस्था अपनी चरम पर थी, जिससे कलिसिया में सामाजिक शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। इसने अपने को कार्य क्षमता के सवाल तक सीमित रखने के बदले अपने दृष्टिकोण को अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता की सारी संरचनाओं तक फैलाया। विश्वपत्र आर्थिक शक्ति को कुछ एक लोगों के हाथों में केंद्रित किए जाने का विरोध करता है। यह असीमित प्रतिस्पर्धा और सामूहिक परियोजनाओं दोनों की आलोचना करता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को कमजोर करते हैं। वहीं यह कार्यकर्ताओं के संघीय अधिकारों और इस बात पर जोर देता है कि वेतन सिर्फ प्रदर्शन के अनुरूप नहीं होना चाहिए बल्कि कार्यकर्ताओं की जरूरतों और उनके परिवारों के अनुरूप। इस संरचना के अंतर्गत संत पापा पियूस 11वें ने विकल्प के सिद्धांत की रूपरेखा को व्यवस्थित रूप से तैयार किया जो सामाजिक धर्म शिक्षाओं का एक अभिन्न अंग बन गई। इस सिद्धांत के अनुसार जो कुछ व्यक्तियों, परिवारों, मध्यस्थ संगठनों और स्थानीय समुदायों के द्वारा किया जा सकता है वह उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा ना किया जाए। इन सारी चीजों के अलावे उनके विभिन्न सिद्धांतों में नॉन अभियामो बिसोनियो और मित ब्रेंदेर सोगार से लेकर दिवीनी रिदेम तोरिस तक संत पापा पियूस 11वें ने स्पष्ट रूप में व्यक्तिगत संपत्ति की सामाजिक भूमिका का वर्णन किया और तानाशाही के उन तरीकों की निंदा की जो मानवीय सम्मान को कम करते, समाज में जीवन का गला घोंटते

अभिनेताना और परिवारों को सही संभावना जिससे वे एक सम्मानजनक जीवन निर्वाहन कर सकें। श्रोताओं, द्वितीय विश्व युद्ध के दुखद संदर्भ में और उसके बाद जो पुनर्निर्माण हुए, संत पापा पियूस 11वें की धर्म शिक्षा ने सामाजिक धर्म सिद्धांत के विकास में एक विशेष योगदान प्रदान किया। यह विशेषकर उनके ख्रीस्ट जयंती के रेडियो संदेशों में, जिसमें उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय कार्य को रेखांकित किया जो न्याय, शांति और मानवीय सम्मान की पहचान पर आधारित था। इन संदेशों में संत पापा ने समाज के संग एक वार्ता का प्रस्ताव रखा जो प्राकृतिक नियम की अपील पर आधारित है, जिसे ऐसे वस्तुनिष्ठ सिद्धांत का एक आधार माना जाता है जो लोगों और राज्यों के हित से पहले आता है और जिन्हें देशों के अंदरूनी जीवन और उनके आपसी रिश्तों दोनों की देखरेख करना चाहिए। संत पापा पियूस 12वें ने व्यावसायिक संघों, मजदूरों के संगठनों और मध्यस्थ प्रबंधकों को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर एक भूमिका प्रदान की। उन्होंने समाज के इन व्यवस्थित संरचनाओं को सामाजिक संतुलन और जन सामान्य की भलाई हेतु एक महत्वपूर्ण सुरक्षा स्वरूप देखा। उन्होंने शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध एक अच्छी नियमावली की आवश्यकता की बात को सुनिश्चित किया और उन्होंने गणतंत्र को अधिकारों के उचित उपयोग हेतु एक माध्यम स्वरूप देखा। इसके साथ ही उन्होंने कानून का इस्तेमाल या ताकत के आधार पर लागू करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने इस बात की याद दिलाई कि सबसे ताकतवर लोगों के फायदे में चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कमजोर लोगों पर जुल्म करता है और देशों के बीच भरोसे को पूरी तरह से कमजोर करता है। अंततः संत पापा पियूस 11वें ने इस बात की पहचान की कि अत्यधिक आर्थिक असमानता देशों के मध्य युद्ध भड़काने के मुख्य कारणों में से एक है। इस संदर्भ में 3 दिशा निर्देश हमारे समय में खास हैं, जो वर्तमान परिस्थिति में वैश्विक शक्ति के नए रूपों को बढ़ती असमानताओं में चिन्हित करती है। कानून को हितों से ऊपर रखने की जरूरत, इस बात की सचेतना कि आर्थिक असमानताएं हिंसा और तनाव को जन्म देती हैं, संघों में नेटवर्क की आवश्यकता जो व्यक्तियों और देश के बीच मध्यस्थता स्थापित करने में सहयोग देती है। ये सारी दिशा निर्देशिकाएं हमें महत्वपूर्ण मापदंड प्रदान करते हैं जो हमें सामाजिक धर्म सिद्धांत के वैश्विक आयाम को परिभाषित करने और एक न्यायपूर्ण तथा शांतिमय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति उत्पन्न करने में मदद करते हैं। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कलीसिया संत मक्सिमिलियानो कोल्बे की याद जिस महीना करती है, उसी महीने अमेरिका में कार्तिक विश्वासी मौत की सजा का विरोध करके जीवन का सम्मान करने के लिए उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं। इस महीने कलीसिया ने संत मक्सिमिलियानो कोल्बे का पर्व मनाया, जो एक पोलिश पुरोहित थे और संत मरियम के निष्कलंक हृदय के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे, जिन्हें 1941 में नाजी जर्मन नजरबंद शिविर में कैद करके मार दिया गया। अमेरिका के विश्वासी संत मक्सिमिलियानो कोल्बे की मध्यस्थता की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, जहां 2025 में 47 लोगों को फांसी की सजा दिए जाने के रिकॉर्ड के बाद यह लगातार बढ़ रही है। 2026 में अब तक 23 लोगों को फांसी दी जा चुकी है, जिनमें संत कोल्बे के पर्व से एक दिन पहले 3 लोगों को फांसी की सजा मिलना भी शामिल है। ऑशविट्स में नाजी मौत शिविर से मिले साक्ष्य से हम देख सकते हैं कि कैदियों के इस संरक्षक संत और जीवन समर्थक को मौत पर जीवन की ताकत पर सचमुच कितना यकीन था। ऐसे समय में जब अमेरिका के कई राज्य न्याय के नाम पर लोगों को फांसी दे रहे हैं और नुकसान के कभी न खत्म होने वाले चक्र में मौत का बदला मौत से ले रहे हैं, संत कोल्बे हमें न्याय का ऐसा नजरिया तलाशने के लिए प्रेरित करते हैं जो जीवन पर आधारित हो। कोल्बे को नाजी शासन का खुलेआम विरोध करने के लिए जेल में डाला गया था, जिसे उन्होंने अपने लोकप्रिय पत्रिका और रेडियो स्टेशन के द्वारा प्रसारित किया था। जुलाई में कोल्बे के बैरक से कुछ लोग भाग गए थे। सजा के तौर पर कमांडर ने 10 लोगों को मारने के लिए एक भूख के कमरे में भेजने के लिए चुना। जब फ्रांसिस चेक गजोनेचेक नाम के एक जवान व्यक्ति को चुना गया, तो वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए रोने लगा। तब कोल्बे आगे बढ़े और उनकी जगह ले। मौत के सामने कोल्बे के बलिदान ने इस जवान पिता और उनके बच्चों के भविष्य के लिए जीवन के प्रति उनकी पक्की प्रतिबद्धता को दिखाया। वह प्रतिबद्धता नहीं रुकी। जब कोल्बे और उनके साथ ही 9 कैदी एक अंधेरे कमरे में भूख से मर रहे थे, तो उसने उन्हें जीने की वजह दी। और स्विस की कहानियां बतलाती हैं कि कोल्बे उन लोगों के साथ प्रार्थना किए और भजन गाए और उन्होंने उनके पाप स्वीकार भी सुने। जीवन की यह आशा पूरे मौत शिविर में लोगों तक फैली हुई थी। कड़ी सजा इसलिए दी गई थी ताकि यह एक उदाहरण बन जाए तथा यह दिखाया जा सके कि नाजियों ने जिन लोगों को हिरासत में लिया था, उनके जीवन पर उनकी कितनी ताकत थी। लेकिन चीख पुकार और दर्द से रोने के बजाय पूरे कैंप में कैदियों को उस कमरे से उम्मीद की आवाजें सुनाई दी। 3 हफ्तों से भी अधिक समय तक बिना कुछ खाए रहने के बावजूद कोल्बे और उनके साथ 3 व्यक्ति जिंदा बचे थे। अंत में उन्हें कार्बोलिक एसिड का जानलेवा इंजेक्शन देकर मार दिया गया। इस तरह कोल्बे ने अंत तक अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी और नर्स से जानलेवा सुई लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। फ्रांसिस चेक न सिर्फ उस भुखमरी वाले कमरे से बल्कि ऑशविट्स और पूरी लड़ाई से भी बच गया, इसलिए 41 साल बाद वह भी मौजूद था जब पोलिश पोप संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में संत मक्सिमिलियन कोल्बे को संत घोषित किया। कैथोलिक मोबिलाइजेशन नेटवर्क के कार्यकारी निदेशक क्रिसेन वेलेनकोट मार्फी कहते हैं कि हर बार जब अमेरिका में किसी को फांसी दी जाती है, जैसे कि इस साल 23 लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो मुझे संत कोल्बे की मौत वाले जगह पर जीवन बचाने के पक्के इरादे की याद आती है। उन्होंने कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि वे हमारी मध्यस्थता करें, क्योंकि हम अपने समय में अमेरिका में मौत की सजा का विरोध करके ऐसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं। ओडिशा के कंधमाल दंगों के 18 साल बाद भी पीड़ितों को न्याय का इंतजार है। 25 अगस्त को भारत के ओडिशा के कंधमाल जिले में ईसाई विरोधी हिंसा शुरू होने के 18 साल पूरे हो गए। यह हिंसा 2008 में शुरू हुई थी। मानवाधिकार रिपोर्ट के मुताबिक इस बड़ी हिंसा की वजह से करीब 360 गिरजाघर, पूजा स्थल एवं सार्वजनिक स्थान तबाह कर दिए गए या जला दिए गए। 75,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए और 40 से ज्यादा महिलाओं के साथ यौन हिंसा हुई।
सैकड़ों गांवों को निशाना बनाया गया, जिससे हजारों परिवारों को अपने घर छोड़ देने पड़े। करीब 12,000 बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आई। जबरदस्ती हिंदू धर्म में परिवर्तन के कई मामले सामने आए। मानवाधिकार संगठन इस बात पर जोर देते हैं कि बचे हुए लोगों और बिगड़ हुए परिवार सही मुआवजे और पूरी कानूनी न्याय की मांग अभी भी कर रहे हैं। भुवनेश्वर के वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक केदार मिश्रा को इस बात का अफसोस है कि देश में राजनीतिक विरोध को गैर कानूनी माना जाता है, जहां न्याय एक मजाक बन गया है, क्योंकि किसी को कभी भी हिरासत में लिया जा सकता है। कंधमाल मानवाधिकारों के प्रवर्तकों में से एक फादर अजय कुमार सिंह का कहना है कि 10 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून गैर कानूनी है। उन्होंने आगे कहा, यह कानून नागरिकों के साथ भेदभाव करता है। अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर ख्रिस्ते और इस्लाम के साथ भेदभाव किया जाता है। उनके धार्मिक और सामाजिक मेलजोल में रुकावट डाली जाती है। नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स और नर्मदा बचाओ आंदोलन की फाउंडर मेधा पाटकर कहती हैं कि जब कोई भी पुरस्कार वितरण समारोह होता है तो उन्हें दुख होता है। उन्होंने कहा, हर तरफ मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। भारत के संविधान को खत्म करने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। कंधमाल हिंसा ने हमें गुजरात दंगों की याद दिला दी। आज पूरे भारत में हिंसा का माहौल है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, दलितों, आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सरकारी योजना और कार्यक्रम में गरीबों की मौलिक जरूरतों को अहमियत नहीं दी जा रही है। इसलिए नफरत के खिलाफ लड़ने और समुदाय एवं देश में भाईचारे के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। दक्षिणी अरब के विकर अपोस्तोलिक बिशप पाओलो मार्टिनेली ओएफएम कैप ने वैटिकन न्यूज से पोप लियो 14वें की शांति की अपील के बारे में बात की। कैपुचिन बिशप पाओलो मार्टिनेली कहते हैं, हथियारों से कभी कोई हल नहीं निकलेगा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

Kunobis 4 Kultus 4 Kanas.

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापलियो चौदहवें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास की चर्चा सुन रहे हैं। संत पापलियो चौदहवें का यह प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्तमान संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि कलिसिया की सामाजिक धर्म शिक्षा, इस अभिव्यक्ति की मुहर संत पापा पियूस 12वें द्वारा 1950 में लगाई गई, जबकि इसकी विषय वस्तुओं के ढांचे का स्वरूप सामाजिक शिक्षा के शरीर स्वरूप संत पापलियो 13वें के द्वारा विश्व प्रेरितिक पत्र रेरुम नोवारुम से शुरू हुई। श्रोताओं, रेरुम नोवारुम कलिसिया की सामाजिक धर्म शिक्षा के विकास में एक मील का पत्थर है। यह दस्तावेज हमारे लिए कार्य और कार्यकर्ता के सम्मान को अपने चिंतन के प्रथम पायदान पर रखता है। यह व्यक्ति और किसी परिवार के लिए उचित मजदूरी के अधिकार को सुदृढ़ता प्रदान करता है। यह इस बात को चिन्हित करता है कि व्यक्तियों का एक मूलभूत मूल्य है जो पूंजी और लाभ के पहले आता है। यह व्यक्तिगत संपत्ति के साथ साथ उसकी जरूरी सामाजिक भूमिका का बचाव, मजदूरों के संगठनों का सम्मान और वर्ग संघर्ष की मानसिकता के विकल्प में समाज के अलग अलग हिस्सों के बीच सहयोग के तरीकों का सुझाव देता है। हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि संत पापा पियूस 11वें इस ख्रिस्तीय सामाजिक कार्य को मान्यकारिता महाधिकार पत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। रेरुम नोवारुम कलिसिया के प्राचीन ज्ञान मानव और सामाजिक जीवन से संबंधित है, अपने में एक नया स्वरूप लेता है जो औद्योगिक युग का प्रत्युत्तर देता और सामाजिक धर्म सिद्धांत के रूप में एक प्रथम व्यवस्थित कार्य की रूपरेखा को प्रकट करता है, जिसे आने वाले युगों में आगे विकसित किया जा सके। यद्यपि संत पापा लियो 13वें के द्वारा वर्णित बहुत सी ऐतिहासिक परिस्थितियां परिवर्तित हुई हैं, कम से कम दो विचारों को हम आज भी अत्यधिक महत्वपूर्ण पाते हैं। वित्त या उत्पादन की मानसिकता के ऊपर मानवीय श्रम की प्रधानता, इसके परिणाम स्वरूप शोषण से सबसे अधिक संवेदनशील लोगों और परिवारों पर ध्यान दिया जाता है, और दूसरा सुसमाचार की घोषणा तथा अधिक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के बीच अटूट संबंध। रेरुम नोवारुम इस भांति हमें इस बात की याद दिलाती है कि ऐसा कोई भी सच्चा सुसमाचार की घोषणा नहीं है जो मानवीय समाज की आधारशिला पर प्रभाव न डालती हो। श्रोताओं, संत पापा पियूस 11वें का विश्व पत्र क्वाड्रुजेसिमा आनो 40 वर्ष सन 1931 में रेरुम नोवारुम की 40वीं वर्ष गांठ के अवसर पर प्रकाशित किया गया, जब वैश्विक आर्थिक व्यवस्था अपने चरम पर थी, जिससे कलिसिया में सामाजिक शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। इसने अपने को कार्य क्षमता के सवाल तक सीमित रखने के बदले अपने दृष्टिकोण को अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता की सारी संरचनाओं तक फैलाया। विश्वपत्र आर्थिक शक्ति को कुछ एक लोगों के हाथों में केंद्रित किए जाने का विरोध करता है। यह असीमित प्रतिस्पर्धा और सामूहिक परियोजनाओं दोनों की आलोचना करता है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को कमजोर करते हैं। वहीं यह कार्यकर्ताओं के संघीय अधिकारों और इस बात पर जोर देता है कि वेतन सिर्फ प्रदर्शन के अनुरूप नहीं होना चाहिए, बल्कि कार्यकर्ताओं की जरूरतों और उनके परिवारों के अनुरूप। इस संरचना के अंतर्गत संत पापा पियूस 11वें ने विकल्प के सिद्धांत की रूपरेखा को व्यवस्थित रूप से तैयार किया, जो सामाजिक धर्म शिक्षाओं का एक अभिन्न अंग बन गई। इस सिद्धांत के अनुसार जो कुछ व्यक्तियों, परिवारों, मध्यस्थ संगठनों और स्थानीय समुदायों के द्वारा किया जा सकता है, वह उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा न किया जाए। इन सारी चीजों के अलावे उनके विभिन्न सिद्धांतों में नॉन अभियामो बिसोनियो और मित ब्रेंदेर सोगार से लेकर दिवीनी रिदेम तोरिस तक संत पापा पियूस 11वें ने स्पष्ट रूप में व्यक्तिगत संपत्ति की सामाजिक भूमिका का वर्णन किया और तानाशाही के उन तरीकों की निंदा की जो मानवीय सम्मान को कम करते समाज में जीवन का गला घोंटते हैं, राज्य को उसकी सही कीमत से ज्यादा अहमियत देते और नस्ल के आधार पर भेदभाव करते हैं। सामाजिक धर्म शिक्षा की तीन बातें आज भी हमारे समाज में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस बात की सचेतना कि अन्याय न केवल व्यक्तिगत व्यवहार तक ही सीमित है, बल्कि यह आर्थिक और संस्थागत संरचना में शामिल है। पूरकता के सिद्धांत की महत्वपूर्णता जो संघों और समुदायों के ताने बाने को मजबूत करने जबकि शक्ति के केंद्रीकरण को दूर करता है और मर्यादापूर्ण कार्य के बीच का संबंध उचित मेहनताना और परिवारों को सही संभावना जिससे वे एक सम्मानजनक जीवन निर्वाहन कर सकें। श्रोताओं, द्वितीय विश्व युद्ध के दुखद संदर्भ में और उसके बाद जो पुनर्निर्माण हुए, संत पापा पियूस 11वें की धर्म शिक्षा ने सामाजिक धर्म सिद्धांत के विकास में एक विशेष योगदान प्रदान किया। यह विशेषकर उनके ख्रीस्त जयंती के रेडियो संदेशों में, जिसमें उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय कार्य को रेखांकित किया जो न्याय, शांति और मानवीय सम्मान की पहचान पर आधारित था। इन संदेशों में संत पापा ने समाज के संग एक वार्ता का प्रस्ताव रखा जो प्राकृतिक नियम की अपील पर आधारित है, जिसे ऐसे वस्तुनिष्ठ सिद्धांत का एक आधार माना जाता है जो लोगों और राज्यों के हित से पहले आता है और जिन्हें देशों के अंदरूनी जीवन और उनके आपसी रिश्तों दोनों की देखरेख करना चाहिए। संत पापा पियूस 12वें ने व्यावसायिक संघों, मजदूरों के संगठनों और मध्यस्थ प्रबंधकों को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर एक भूमिका प्रदान की। उन्होंने समाज के इन व्यवस्थित संरचनाओं को सामाजिक संतुलन और जन सामान्य की भलाई हेतु एक महत्वपूर्ण सुरक्षा स्वरूप देखा। उन्होंने शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध एक अच्छी नियमावली की आवश्यकता की बात को सुनिश्चित किया और उन्होंने गणतंत्र को अधिकारों के उचित उपयोग हेतु एक माध्यम स्वरूप देखा। इसके साथ ही उन्होंने कानून का इस्तेमाल या ताकत के आधार पर लागू करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने इस बात की याद दिलाई कि सबसे ताकतवर लोगों के फायदे में चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कमजोर लोगों पर जुल्म करता है और देशों के बीच भरोसे को पूरी तरह से कमजोर करता है। अंततः संत पापा पियूस 11वें ने इस बात की पहचान की कि अत्यधिक आर्थिक असमानता देशों के मध्य युद्ध भड़काने के मुख्य कारणों में से एक है। इस संदर्भ में तीन दिशा निर्देश हमारे समय में खास हैं, जो वर्तमान परिस्थिति में वैश्विक शक्ति के नए रूपों को बढ़ती असमानताओं में चिन्हित करती है। कानून को हितों से ऊपर रखने की जरूरत, इस बात की सचेतना कि आर्थिक असमानताएं हिंसा और तनाव को जन्म देती हैं, संघों में नेटवर्क की आवश्यकता जो व्यक्तियों और देश के बीच मध्यस्थता स्थापित करने में सहयोग देती है। ये सारी दिशा निर्देशिकाएं हमें महत्वपूर्ण मापदंड प्रदान करते हैं जो हमें सामाजिक धर्म सिद्धांत के वैश्विक आयाम को परिभाषित करने और एक न्यायपूर्ण तथा शांतिमय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति उत्पन्न करने में मदद करते हैं। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कलीसिया संत मक्सिमिलियानो कोल्बे की याद जिस महीना करती है, उसी महीने अमेरिका में कार्तिक विश्वासी मौत की सजा का विरोध करके जीवन का सम्मान करने के लिए उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं। इस महीने कलीसिया ने संत मक्सिमिलियानो कोल्बे का पर्व मनाया, जो एक पोलिश पुरोहित थे और संत मरियम के निष्कलंक हृदय के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे, जिन्हें 1941 में नाजी जर्मन नजरबंद शिविर में कैद करके मार दिया गया। अमेरिका के विश्वासी संत मक्सिमिलियानो कोल्बे की मध्यस्थता की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, जहां 2025 में 47 लोगों को फांसी की सजा दिए जाने के रिकॉर्ड के बाद यह लगातार बढ़ रही है। 2026 में अब तक 23 लोगों को फांसी दी जा चुकी है, जिनमें संत कोल्बे के पर्व से एक दिन पहले 3 लोगों को फांसी की सजा मिलना भी शामिल है। ऑशविट्स में नाजी मौत शिविर से मिले साक्ष्य से हम देख सकते हैं कि कैदियों के इस संरक्षक संत और जीवन समर्थक को मौत पर जीवन की ताकत पर सचमुच कितना यकीन था। ऐसे समय में जब अमेरिका के कई राज्य न्याय के नाम पर लोगों को फांसी दे रहे हैं और नुकसान के कभी ना खत्म होने वाले चक्र में मौत का बदला मौत से ले रहे हैं, संत कोल्बे हमें न्याय का ऐसा नजरिया तलाशने के लिए प्रेरित करते हैं जो जीवन पर आधारित हो। कोल्बे को नाजी शासन का खुलेआम विरोध करने के लिए जेल में डाला गया था, जिसे उन्होंने अपने लोकप्रिय पत्रिका और रेडियो स्टेशन के द्वारा प्रसारित किया था। जुलाई में कोल्बे के बैरक से कुछ लोग भाग गए थे। सजा के तौर पर कमांडर ने 10 लोगों को मारने के लिए एक भूख के कमरे में भेजने के लिए चुना। जब फ्रांसिस चेक गजोने चेक नाम के एक जवान व्यक्ति को चुना गया, तो वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए रोने लगा। तब कोल्बे आगे बढ़े और उनकी जगह ले। मौत के सामने कोल्बे के बलिदान ने इस जवान पिता और उनके बच्चों के भविष्य के लिए जीवन के प्रति उनकी पक्की प्रतिबद्धता को दिखाया। वह प्रतिबद्धता नहीं रुकी। जब कोल्बे और उनके साथ ही 9 कैदी एक अंधेरे कमरे में भूख से मर रहे थे, तो उसने उन्हें जीने की वजह दी। और स्विस की कहानियां बतलाती हैं कि कोल्बे उन लोगों के साथ प्रार्थना किए और भजन गाए और उन्होंने उनके पाप स्वीकार भी सुने। जीवन की यह आशा पूरे मौत शिविर में लोगों तक फैली हुई थी। कड़ी सजा इसलिए दी गई थी ताकि यह एक उदाहरण बन जाए तथा यह दिखाया जा सके कि नाजियों ने जिन लोगों को हिरासत में लिया था, उनके जीवन पर उनकी कितनी ताकत थी। लेकिन चीख पुकार और दर्द से रोने के बजाय पूरे कैंप में कैदियों को उस कमरे से उम्मीद की आवाजें सुनाई दी। 3 हफ्तों से भी अधिक समय तक बिना कुछ खाए रहने के बावजूद कोल्बे और उनके साथ 3 व्यक्ति जिंदा बचे थे। अंत में उन्हें कार्बोलिक एसिड का जानलेवा इंजेक्शन देकर मार दिया गया। इस तरह कोल्बे ने अंत तक अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी और नर्स से जानलेवा सुई लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। फ्रांसिस जेक न सिर्फ उस भुखमरी वाले कमरे से बल्कि ऑशविट्ज और पूरी लड़ाई से भी बच गया। इसलिए 41 साल बाद वह भी मौजूद था जब पोलिश पोप संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में संत मक्सिमिलियन कोल्बे को संत घोषित किया। कैथोलिक मोबिलाइजेशन नेटवर्क के कार्यकारी निदेशक क्रिसेन वेलेनकोट मार्फी कहते हैं कि हर बार जब अमेरिका में किसी को फांसी दी जाती है, जैसे कि इस साल 23 लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो मुझे संत कोल्बे की मौत वाली जगह पर जीवन बचाने के पक्के इरादे की याद आती है। उन्होंने कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि वे हमारी मध्यस्थता करें, क्योंकि हम अपने समय में अमेरिका में मौत की सजा का विरोध करके ऐसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं। ओडिशा के कंधमाल दंगों के 18 साल बाद भी पीड़ितों को न्याय का इंतजार है। 25 अगस्त को भारत के ओडिशा के कंधमाल जिले में ईसाई विरोधी हिंसा शुरू होने के 18 साल पूरे हो गए। यह हिंसा 2008 में शुरू हुई थी। मानवाधिकार रिपोर्ट के मुताबिक इस बड़ी हिंसा की वजह से करीब 360 गिरजाघर, पूजा स्थल एवं सार्वजनिक स्थान तबाह कर दिए गए या जला दिए गए। 75,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए और 40 से ज्यादा महिलाओं के साथ यौन हिंसा हुई।
सैकड़ों गांवों को निशाना बनाया गया, जिससे हजारों परिवारों को अपने घर छोड़ देने पड़े। करीब 12,000 बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आई। जबरदस्ती हिंदू धर्म में परिवर्तन के कई मामले सामने आए। मानवाधिकार संगठन इस बात पर जोर देते हैं कि बचे हुए लोगों और बिगड़ हुए परिवार सही मुआवजे और पूरी कानूनी न्याय की मांग अभी भी कर रहे हैं। भुवनेश्वर के वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक केदार मिश्रा को इस बात का अफसोस है कि देश में राजनीतिक विरोध को गैर कानूनी माना जाता है, जहां न्याय एक मजाक बन गया है, क्योंकि किसी को कभी भी हिरासत में लिया जा सकता है। कंधमाल मानवाधिकारों के प्रवर्तकों में से एक फादर अजय कुमार सिंह का कहना है कि 10 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून गैर कानूनी है। उन्होंने आगे कहा, यह कानून नागरिकों के साथ भेदभाव करता है। अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर ख्रिस्ती और इस्लाम के साथ भेदभाव किया जाता है। उनके धार्मिक और सामाजिक मेल जोल में रुकावट डाली जाती है। नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स और नर्मदा बचाओ आंदोलन की फाउंडर मेधा पाटकर कहती हैं कि जब कोई भी पुरस्कार वितरण समारोह होता है तो उन्हें दुख होता है। उन्होंने कहा, हर तरफ मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। भारत के संविधान को खत्म करने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। कंधमाल हिंसा ने हमें गुजरात दंगों की याद दिला दी। आज पूरे भारत में हिंसा का माहौल है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, दलितों, आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सरकारी योजना और कार्यक्रम में गरीबों की मौलिक जरूरतों को अहमियत नहीं दी जा रही है। इसलिए नफरत के खिलाफ लड़ने और समुदाय एवं देश में भाईचारे के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। दक्षिणी अरब के विकर अपोस्तोलिक बिशप पाओलो मार्टिनेली OFM कैप ने वैटिकन न्यूज से पोप लियो 14वें की शांति की अपील के बारे में बात की। कैपुचिन बिशप पाओलो मार्टिनेली कहते हैं, हथियारों से कभी कोई हल नहीं निकलेगा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पवित्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: अमृत को न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।

0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: महिमा का पहला भेद, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं,
3: मतलब हम विश्वास में दृढ़ रहें।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: महिमा का दूसरा भेद, प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित होते हैं,
3: मतलब हम ईश्वर को दिन दिन अधिक प्यार करें।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का तीसरा भेद, पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है,
2: मतलब हम अपने पड़ोसियों को प्यार कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा रखी जाती है,
2: मतलब हम अपने कर्तव्य काम ठीक से कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का पांचवा भेद, माता मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है।
2: मतलब हमारे बिछुड़े भाई बहने असल धर्म में फिर लौट सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा करके अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
2: पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा।
2: Cari fratelli e sorelle, in questa ultima catechesi sulla Costituzione Sacro Sanctum Concilium,
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम पर अपनी इस अंतिम धर्म शिक्षा माला में आज मैं इस बात पर चिंतन करना चाहूँगा कि धर्म सभा के आचार्यों ने धर्म विधि के संबंध में नवनीकरण की चाह क्यों रखी। इस संदर्भ में धर्म सभा का तृतीय पत्र, जिसे कार्डिनल जोवान्नी बत्तिस्ता मोंटेनी ने, जो उस समय मिलान के महाधर्माध्यक्ष थे, 28 अक्टूबर 1962 को कलिसियाई विश्वासियों के नाम प्रेषित किया, हमें विशेष रूप से प्रकाशित करता है। धर्मविधि, उन्होंने लिखा, एक ईमानदारी पूर्ण दिव्य और मानवीय अभिव्यक्ति है। यह एक भाषा है, वहीं यह दिव्य शिक्षण हेतु एक वाहन है, तो दूसरी ओर यह ईश्वर से वार्ता में एक आवाज है। यह स्पष्ट है कि यह अपने शिक्षण कार्य का परित्याग नहीं कर सकती है, ना ही यह आस्था और भक्ति को अपनी समझ में आने का मौका देने में नाकाम हो सकती है। इन सारी बातों से विश्वस्त भविष्य में नियुक्त होने वाले संत पापा पॉल छठवें ने इस बात की सुनिश्चितता जताई कि विश्वासी गण अपने में शांत और निष्क्रिय नहीं रह सकते हैं। उनकी भौतिक उपस्थिति को आध्यात्मिक अनुपस्थिति से संयुक्त नहीं किया जा सकता है। इन दोनों वाक्यों के बीच की समानता, जिसे हम द्वितीय वैटिकन महासभा के साक्ष्य संख्या 48 में पाते हैं, कलिसिया ख्रिस्त के विश्वासियों से यह सविनय चाह रखती है कि वे अपने में अपरिचितों या मूक दर्शकों की भांति नहीं रह सकते हैं। इसके विपरीत वे प्रार्थनाओं और पूजन विधियों की अच्छी समझ के माध्यम इस सचेतना में कि वे क्या कर रहे हैं, भक्ति और पूरे सहयोग में उन पवित्र कार्यों में सहभागी हो सकते हैं। उनका दीक्षांत ईश वचनों के अनुरूप हो और वे ईश्वर की मेज में सहभागी होते हुए उनके शरीर से पोषित होते हों। वे निर्मल बलि अर्पित करते हुए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव अर्पित करें, केवल पुरोहित के हाथों द्वारा नहीं, बल्कि उनके द्वारा वे अपने को भी अर्पित करना सीखें। ख्रिस्त की मध्यस्थता द्वारा वे दिन ब दिन ईश्वर और एक दूसरे के संग एक गहरी एकता में प्रवेश करें, जिससे ईश्वर अपने में सर्वे सर्वा हों। इन शब्दों में धर्म विधि के मूल्य की एक नवीन चेतना अभिव्यक्त होती है। कलिसिया के धार्मिक अनुष्ठानों में हमें एक अवसर मिलता है जहां हम ईश्वर के संग एक सच्चे संबंध को अनुभव करते हैं, जहां हमारा मिलन मुक्ति की घटना से होती है। चूंकि निशानियां और पवित्र धर्म विधि के वचन को समझने हेतु हम जटिलता का अनुभव करते हैं, विश्वासियों की सहभागिता अपने में निष्क्रिय नहीं हो सकती है। धर्म सभा नवीनीकरण का उद्देश्य धर्म विधि को चमकदार बनाने का था, जो हमारे लिए दिव्य विनिमय का मुख्य स्रोत है, जिसके द्वारा ईश्वर हमारे संग वार्ता करते हैं। इस विश्वास से उस बात की उत्पत्ति हुई कि धर्म ग्रंथ के समृद्ध पदों और प्रार्थनाओं को विश्वासियों के लिए और सुगम बनाया जाए और साथ ही समारोह की सूची को क्रमबद्ध करना जिसका उपयोग धर्मविधि की पुस्तकों में उस समय किया जाता था। वास्तव में चूंकि धर्म विधि एक सजीव घटना है, संत पापा ने कहा, यह सदियों से हमेशा विकसित और परिवर्तनों का शिकार हुई है। धर्म सिद्धांत ने विभिन्न युगों की आवश्यकता अनुसार इसके स्वरूपों को अपनाया है। इस भांति यह हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि द्वितीय वैटिकन ने भी विरासत की परंपरा का पूर्ण सम्मान करते हुए और विशेष करके इसे और अधिक पहुंच के योग्य बनाने हेतु इस बात पर विचार मंथन किया कि धर्म विधि की पुस्तकों में सुधार करना जरूरी है। संत पापा लियो चौदहवें ने कहा कि धर्म सभा के आचार्यों के दिमाग में जो बातें थीं, उसे धर्म सिद्धांत साक्रोसांतुम कॉन्चिलियम की संख्या 21 में वर्णन किया गया है। ख्रिस्तीय लोग पवित्र धर्म विधि से निश्चित रूप में कृपाओं को प्रचुर मात्रा में प्राप्त करें। पवित्र माता कलीसिया इस बात की चाह रखती है कि धर्म विधि के सामान्य पुनर्स्थापन में विशेष ध्यान दे, क्योंकि पूजा पाठ में ऐसे तत्व होते हैं जो बदलते नहीं हैं, जो ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। इसके साथ ही हम इसमें उन तत्वों को भी पाते हैं जो बदलते हैं। ये चीजें नहीं बदली जा सकती हैं, लेकिन उन्हें समय के साथ बदलने की जरूरत है। यदि उन्हें धर्म विधि की अंदरूनी प्रवृत्ति से मेल ना खाने वाली किसी चीज से अवरोध का सामना करना पड़ता हो या वे उसके लिए सही नहीं रहे हैं। इस पुनर्स्थापन में पदों और धार्मिक क्रियाकलापों दोनों को इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि वे अधिक स्पष्ट रूप में उन पवित्र चीजों की अभिव्यक्ति हों जिनकी ओर वे इंगित कराते हैं। ख्रिस्तीय जन जहां तक संभव हो सके उन्हें सरल रूप में समझने के योग्य हों और उनमें सक्रिय रूप से पूर्ण रूपेण सहभागी हों और उससे एक समुदाय को लाभ होता हो। धर्म विधि में अंतर धर्म विधि के भीतर दिव्य के मध्य अपरिवर्तनीय तत्वों और मानवीय बातों में इसके बदले विभिन्न चीजों में बदलाव की स्वीकृति जैसे कि समय की आवश्यकता है, परिस्थिति और आत्माओं के हित में जरूरी और जैसे कि कलीसियाई पदानुक्रम जो पवित्र आत्मा के निर्देशन में होता हो। संत पापा पियूस 11वें के विश्व पत्र मेडियातोरे देई को जाता है। संत पापा लियो ने कहा कि इसके साथ ही सामान्य नवनिकरण की चाह अचानक उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि इसे 20वीं सदी के शुरू से ही धर्म विधि आंदोलन में देखा गया था, जो एक के बाद एक संत पापाओं के कामों में स्पष्ट झलक रही थी। इस बात पर बल देना कि विश्वासीगण समारोह में अपरिचितों या मूक दर्शकों की भांति सहभागी ना हो, यह पहले ही संत पापा पियूस 11वें के समय प्रेरितिक प्रबोधन दिविनी कुल्तुस में उठाई गई थी। इसके साथ ही पवित्र सप्ताह के धर्म विधियों के क्रम में कोई भी संत पापा पियूस 11वें के हस्तक्षेप की याद कर सकता है, जिसे उन्होंने पास्का की घटनाओं के अनुष्ठान को फिर से व्यवस्थित किया, जिसका अनुष्ठान सदियों से प्रातः कालीन किया जाता था। इन बातों को भी नहीं भूला जा सकता है कि संत पापा जोन 13वें ने प्रातःकालीन प्रार्थनाओं और मिस्सा ग्रंथ को मोल्तु प्रोप्रियो रुबरिकरुम इंस्ट्रक्टुम के माध्यम 25 जुलाई 2060 को सरल बनाया था, जिसमें उन्होंने धर्म विधि में सुधार के लिए बुनियादी सिद्धांतों के प्रस्ताव की व्याख्या की थी। संत पापा लियो ने कहा कि इस भांति द्वितीय वैटिकन महासभा द्वारा धर्म विधि में नवनिकरण को प्रोत्साहित करना कलीसिया के सक्रिय परंपरा में आधारित है। इसकी सही समझ हमें कलीसिया के निश्चित भागों में वैटिकन महासभा के उपरांत प्रचलित कुछ बातों का परित्याग करने को मदद करती है, जो दुरुपयोग स्वरूप रही, जो दुर्भाग्यवश आज भी कभी कभी उभर कर आती है, जहां सुधार के पीछे कुछ सिद्धांतों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है या उन्हें गलत समझा गया है। इस संदर्भ में हमारे लिए धर्म सभा के सिद्धांत में इस बात को याद करना उचित होगा कि धर्म विधि की सेवाएं अपने में व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, बल्कि वे कलीसिया के समारोह हैं जो एकता के संस्कार हैं, अर्थात ईश्वर की पवित्र प्रजा अपने धर्माधीक्षकों के द्वारा एकता में और व्यवस्थित रहते हैं। अतः धर्म विधि की सेवाएं पूरी कलीसिया के शरीर का अंग है जो उसे अभिव्यक्त करती और उसे प्रभावकारी बनाती है। संत पापा लियो ने कहा कि अतः यह याजकों, धर्माधीक्षकों और हर एक पुरोहित का उत्तरदायित्व है कि एक धर्म विधि की सुरक्षा की जाए और उसे बढ़ावा दिया जाए, जिससे उसके नियमों के सम्मान में वह सरलता में चमके और इस तरह एक पवित्र कैथोलिक और प्रेरितिक कलीसिया को अभिव्यक्त करे। एक ऐसे धर्म विधि अपने में सुसमाचार प्रचार का एक मूलभूत माध्यम होगा, कृपा का साधन जिसके द्वारा हम अपने को समर्पित करना सीखते हैं और ख्रीस्त के माध्यम हम ईश्वर और अपने बीच में एकता की प्रकाष्ठा तक पहुंचते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा लियो 14वें ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। बुधवार आम दर्शन समारोह से पहले संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन के संत पापा पॉल सस्तम हॉल के छोटे कमरे में नार्वे के लूथरन धर्माध्यक्षों से मुलाकात की। संत पापा ने उनका सहृदय स्वागत करते हुए कहा, मुझे आज सुबह रोम और यहाँ वाटिकन में आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है और मुझे उम्मीद है कि आपके पास शुरू के ख्रिस्तियों और शहीदों से जुड़ी अलग अलग पवित्र जगहों में जाने का समय होगा। हमारे प्रभु में आस्था की गवाही का यह स्थान हमेशा प्रेरणा का एक स्रोत बनी हुई है, जो हमें भी इसी तरह ईश्वर की महिमा और हमारे भाइयों एवं बहनों की भलाई के लिए अपना जीवन देने का साहस देती है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपने समय में मुश्किल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया एक खास तौर पर उथल पुथल वाले दौर से गुजर रही है। ऐसा लगता है कि लोगों के बीच दुश्मनी बढ़ रही है, जो न केवल अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों और विवादों में, जैसा कि आपने बताया, बल्कि अलग अलग देशों के अंदर भी साफ दिखती है। अक्सर राजनीतिक और सामाजिक बातचीत में कड़वाहट से पता चलता है। इस वजह से मेल मिलाप और भाईचारे के पक्के रास्ते खोजने के लिए मिलकर कोशिश करने की जरूरत है। एक सामान्य बपतिस्मा और साझा मिशन के आधार पर संत पापा ने शांति और न्याय को बढ़ावा देने की सेवा में हमेशा एक साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अंत में संत पापा ने शुरुआती शहीदों संत ओलाफ और संत सुन्नीवा को याद किया, जिनका जीवन ईश्वर और पड़ोसी को समर्पित था, जिसने लोगों को एक करने और दान की बदले वाली शक्ति का हमेशा गवाह बनने में मदद की। उन्होंने कहा, आइए हम ईश्वर का आशीर्वाद मांगे, ताकि ईश्वर अपनी असीम अच्छाई और प्रज्ञा से हमें भाई बहनों की तरह और भी सच्चे दिल से जीने में मदद करें और इस तरह हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए आम गवाही दे सकें। उधर बुधवार आम दर्शन समारोह के दौरान इटली के तीर्थ यात्रियों से बात करते हुए संत पापा लियो 14वें ने हाल ही में दृढ़करण संस्कार लिए हुए युवाओं से कहा, प्यारे युवाओं, दृढ़करण संस्कार में तुम्हें सबसे खूबसूरत तोहफा मिला है, पवित्र आत्मा। यह कोई छिपा कर रखने वाला खजाना नहीं है, बल्कि एक रोशनी है जिसे तुम्हें हर दिन चमकाना है। यह विश्वास भरी बात संत पापा लियो 14वें ने इटली के कियावरी धर्म प्रांत के दृढ़करण संस्कार प्राप्त युवाओं से कहा, जो अपने धर्माध्यक्ष के साथ संत पेत्रुस महागिरजा घर में उपस्थित थे। संत पापा ने नौजवानों, बीमारों और नए शादीशुदा जोड़ों को भी स्वागत किया। उन्होंने याद दिलाया कि गुरुवार और शुक्रवार को धर्म विधि कैलेंडर दो महान संतों, संत मोनिका और संत अगुस्टिन को याद करती है, जिनके बारे में उन्होंने कहा, वे धरती पर पारिवारिक रिश्तों में जुड़े थे और अब स्वर्ग में महिमा की उसी नियति से जुड़े हैं। उनका उदाहरण आप में से हर एक को सुसमाचार के सच की सही और जोशीली खोज के लिए प्रेरित करे, ताकि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी खुशी इसके गवाह बन सकें। पोलिश विश्वासियों का अभिवादन करते हुए संत पापा ने कहा, मैं पोलिश लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। मैं चेस्टोकोवा में इकट्ठा हुए लोगों के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़ता हूँ। पोलैंड की जस्नागोरा प्रतिज्ञाएं, जिसे कार्डिनल स्टीफन ने अपनी जेल के दौरान तैयार किया था और जिसे आज 26 अगस्त को 70 साल बाद इसे फिर से शुरू किया गया है, संत पापा ने उनसे उस विरासत को बर्बाद न करने की अपील करते हुए कहा, इसमें शामिल समाज के नैतिक नवीनीकरण का प्रोग्राम, मानव जीवन की सुरक्षा, शादी और परिवार की देखभाल और बच्चों एवं युवाओं की शिक्षा के जरिए न्याय और भाईचारे की प्रतिबद्धता को प्रेरित करता रहे। उधर वाटिकन विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघेर मास्को के दौरे पर हैं। मंगलवार 25 अगस्त को मास्को में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि ऑफिस में हुई बैठक में वाटिकन सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघेर और रूसी संघ के विदेश मंत्री श्री सर्गेई लावरोव ने मुख्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एकमत होने वाले कई एरिया की पहचान की और रूसी संघ एवं वाटिकन के बीच बातचीत जारी रखने के महत्व पर सहमति जताई।
द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें रूस में कैथोलिक समुदाय से जुड़े मामले और रूस एवं यूक्रेन के बीच शांति का रास्ता शुरू करने के मकसद से मानवीय पहल शामिल थे। वाटिकन के प्रतिनिधि ने संत पापा लियो 14वें की रूस और यूक्रेन के बीच दुश्मनी खत्म करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन से असली बातचीत शुरू करने की अपील को याद किया। महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर ने कहा, वाटिकन का रुख साफ है, लड़ाई को मिलिट्री तरीकों से हल नहीं किया जा सकता, राजनीतिक और राजनयिक प्रक्रिया के लिए हालात बनाना जरूरी है। वाटिकन के अधिकारी ने रूस और यूक्रेन से खुलेपन और अच्छी भावना दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय एवं मानवीय कानून का सम्मान करने की भी अपील की, खासकर आम लोगों, संरचनाओं, घायलों और युद्धबंदियों के मामले में। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने रूस के साथ बातचीत के लिए वाटिकन के खुलेपन और शांति के लिए उनकी प्रतिबद्धता की तारीफ करते हुए कहा कि वह लड़ाई से जुड़े मानवीय मुद्दों पर सहयोग मजबूत करने की जरूरत पर वाटिकन से सहमत हैं। उधर यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख अफगान बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जो जानलेवा हो सकती है। यह आंकड़ा और भी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। देश में कुल 3.7 मिलियन बच्चे अत्यधिक दुबलेपन से पीड़ित हैं, जो दशकों से चल रहे युद्ध और 5 साल से तालिबान के नए कंट्रोल के कारण हैं। इस साल की शुरुआत से 5 लाख से ज्यादा बच्चे गंभीर दुबलेपन की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए हैं। यूनिसेफ अफगानिस्तान के डायरेक्टर ताजुद्दीन ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ रहे दबाव के बारे में बताया। देश के दक्षिणी हिस्से के कुछ इलाकों में अस्पताल हर उपलब्ध बेड पर 3 या 4 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का इलाज कर रहा है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा।
2: Cari fratelli e sorelle, in questa ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium,
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सैक्रोसैंक्टम कंसिलियम पर अपनी इस अंतिम धर्म शिक्षा माला में आज मैं इस बात पर चिंतन करना चाहूँगा कि धर्म सभा के आचार्यों ने धर्म विधि के संबंध में नवनीकरण की चाह क्यों रखी। इस संदर्भ में धर्म सभा का तृतीय

समझ में आने का मौका देने में नाकाम हो सकती है। इन सारी बातों से विश्वस्त भविष्य में नियुक्त होने वाले संत पापा पॉल छठवें ने इस बात की सुनिश्चितता जताई कि विश्वासी गण अपने में शांत और निष्क्रिय नहीं रह सकते हैं। उनकी भौतिक उपस्थिति को आध्यात्मिक अनुपस्थिति से संयुक्त नहीं किया जा सकता है। इन दोनों वाक्यों के बीच की समानता, जिसे हम द्वितीय वैटिकन महासभा के साक्ष्य संख्या 48 में पाते हैं, कलीसिया ख्रिस्त के विश्वासियों से यह सविनय चाह रखती है कि वे अपने में अपरिचितों या मूक दर्शकों की भांति नहीं रह सकते हैं। इसके विपरीत वे प्रार्थनाओं और पूजन विधियों की अच्छी समझ के माध्यम इस सचेतना में कि वे क्या कर रहे हैं, भक्ति और पूरे सहयोग में उन पवित्र कार्यों में सहभागी हो सकते हैं। उनका दीक्षांत ईश वचनों के अनुरूप हो और वे ईश्वर की मेज में सहभागी होते हुए उनके शरीर से पोषित होते हों। वे निर्मल बलि अर्पित करते हुए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव अर्पित करें, केवल पुरोहित के हाथों द्वारा नहीं बल्कि उनके द्वारा वे अपने को भी अर्पित करना सीखें। ख्रिस्त की मध्यस्थता द्वारा वे दिन ब दिन ईश्वर और एक दूसरे के संग एक गहरी एकता में प्रवेश करें, जिससे ईश्वर अपने में सर्वे सर्वा हों। इन शब्दों में धर्म विधि के मूल्य की एक नवीन चेतना अभिव्यक्त होती है। कलीसिया के धार्मिक अनुष्ठानों में हमें एक अवसर मिलता है जहां हम ईश्वर के संग एक सच्चे संबंध को अनुभव करते हैं, जहां हमारा मिलन मुक्ति की घटना से होती है। चूंकि निशानियां और पवित्र धर्म विधि के वचन को समझने हेतु हम जटिलता का अनुभव करते हैं, विश्वासियों की सहभागिता अपने में निष्क्रिय नहीं हो सकती है। धर्म सभा नवीनीकरण का उद्देश्य धर्म विधि को चमकदार बनाने का था, जो हमारे लिए दिव्य विनिमय का मुख्य स्रोत है, जिसके द्वारा ईश्वर हमारे संग वार्ता करते हैं। इस विश्वास से उस बात की उत्पत्ति हुई कि धर्म ग्रंथ के समृद्ध पदों और प्रार्थनाओं को विश्वासियों के लिए और सुगम बनाया जाए, और साथ ही समारोह की सूची को क्रमबद्ध करना, जिसका उपयोग धर्म विधि की पुस्तकों में उस समय किया जाता था। वास्तव में चूंकि धर्म विधि एक सजीव घटना है, संत पापा ने कहा, यह सदियों से हमेशा विकसित और परिवर्तनों का शिकार हुई है। धर्म सिद्धांत ने विभिन्न युगों की आवश्यकता अनुसार इसके स्वरूपों को अपनाया है। इस भांति यह हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि द्वितीय वैटिकन ने भी विरासत की परंपरा का पूर्ण सम्मान करते हुए और विशेष करके इसे और अधिक पहुंच के योग्य बनाने हेतु इस बात पर विचार मंथन किया कि धर्म विधि की पुस्तकों में सुधार करना जरूरी है। संत पापा लियो 14वें ने कहा कि धर्म सभा के आचार्यों के दिमाग में जो बातें थीं, उसे धर्म सिद्धांत साक्रोसांतुम कॉन्चेलियम की संख्या 21 में वर्णन किया गया है। ख्रिस्तीय लोग पवित्र धर्म विधि से निश्चित रूप में कृपाओं को प्रचुर मात्रा में प्राप्त करें। पवित्र माता कलीसिया इस बात की चाह रखती है कि धर्म विधि के सामान्य पुनर्स्थापन में विशेष ध्यान दे, क्योंकि पूजा पाठ में ऐसे तत्व होते हैं जो बदलते नहीं हैं, जो ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। इसके साथ ही हम इसमें उन तत्वों को भी पाते हैं जो बदलते हैं। ये चीजें नहीं बदली जा सकती हैं, लेकिन उन्हें समय के साथ बदलने की जरूरत है। यदि उन्हें धर्म विधि की अंदरूनी प्रवृत्ति से मेल ना खाने वाली किसी चीज से अवरोध का सामना करना पड़ता हो या वे उसके लिए सही नहीं रहे हैं। इस पुनर्स्थापन में पदों और धार्मिक क्रियाकलापों दोनों को इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि वे अधिक स्पष्ट रूप में उन पवित्र चीजों की अभिव्यक्ति हों जिनकी ओर वे इंगित कराते हैं। ख्रिस्तीय जन जहां तक संभव हो सके उन्हें सरल रूप में समझने के योग्य हों और उनमें सक्रिय रूप से पूर्ण रूपेण सहभागी हों और उससे एक समुदाय को लाभ होता हो।
धर विधि में अंतर, धर विधि के भीतर दिव्य के मध्य अपरिवर्तनीय तत्वों और मानवीय बातों में इसके बदले विभिन्न चीजों में बदलाव की स्वीकृति, जैसे कि समय की आवश्यकता है, परिस्थिति और आत्माओं के

हित में जरूरी, और जैसे कि कलीसियाई पदानुक्रम जो पवित्र आत्मा के निर्देशन में होता हो। संत पापा पियूस 11वें के विश्व पत्र मेडियातोरे देई को जाता है। संत पापा लियो ने कहा कि इसके साथ ही सामान्य नवनिकरण की चाह अचानक उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि इसे 20वीं सदी के शुरू से ही धर्म विधि आंदोलन में देखा गया था, जो एक के बाद एक संत पापाओं के कामों में स्पष्ट झलक रही थी। इस बात पर बल देना कि विश्वासीगण समारोह में अपरिचितों या मूक दर्शकों की भांति सहभागी ना हो, यह पहले ही संत पापा पियूस 11वें के समय प्रेरितिक प्रबोधन दिविनी कुल्तुस में उठाई गई थी। इसके साथ ही पवित्र सप्ताह की धर्म विधियों के क्रम में कोई भी संत पापा पियूस 11वें के हस्तक्षेप की याद कर सकता है, जिसे उन्होंने पास्का की घटनाओं के अनुष्ठान को फिर से व्यवस्थित किया, जिसका अनुष्ठान सदियों से प्रातः कालीन किया जाता था। इन बातों को भी नहीं भूला जा सकता है कि संत पापा जोन 13वें ने प्रातःकालीन प्रार्थनाओं और मिस्सा ग्रंथ को मोल्टू प्रोप्रियो रुबरिकरुम इंस्ट्रक्टुम के माध्यम 25 जुलाई 2060 को सरल बनाया था, जिसमें उन्होंने धर्म विधि में सुधार के लिए बुनियादी सिद्धांतों के प्रस्ताव की व्याख्या की थी। संत पापा लियो ने कहा कि इस भांति द्वितीय वैटिकन महासभा द्वारा धर्म विधि में नवनिकरण को प्रोत्साहित करना कलीसिया के सक्रिय परंपरा में आधारित है। इसकी सही समझ हमें कलीसिया के निश्चित भागों में वैटिकन महासभा के उपरांत प्रचलित कुछ बातों का परित्याग करने को मदद करती है, जो दुरुपयोग स्वरूप रही, जो दुर्भाग्यवश आज भी कभी कभी उभर कर आती है, जहां सुधार के पीछे कुछ सिद्धांतों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है या उन्हें गलत समझा गया है। इस संदर्भ में हमारे लिए धर्म सभा के सिद्धांत में इस बात को याद करना उचित होगा कि धर्म विधि की सेवाएं अपने में व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, बल्कि वे कलीसिया के समारोह हैं जो एकता के संस्कार हैं, अर्थात ईश्वर की पवित्र प्रजा अपने धर्माध्यक्षकों के द्वारा एकता में और व्यवस्थित रहते हैं। अतः धर्म विधि की सेवाएं पूरी कलीसिया के शरीर का अंग है, जो उसे अभिव्यक्त करती और उसे प्रभावकारी बनाती है। संत पापा लियो ने कहा कि अतः यह याजकों, धर्माध्यक्षकों और हर एक पुरोहित का उत्तरदायित्व है कि एक धर्म विधि की सुरक्षा की जाए और उसे बढ़ावा दिया जाए, जिससे उसके नियमों के सम्मान में वह सरलता में चमके और इस तरह एक पवित्र कैथोलिक और प्रेरितिक कलीसिया को अभिव्यक्त करे। एक ऐसे धर्म विधि अपने में सुसमाचार प्रचार का एक मूलभूत माध्यम होगा, कृपा का साधन, जिसके द्वारा हम अपने को समर्पित करना सीखते हैं और ख्रीस्त के माध्यम हम ईश्वर और अपने बीच में एकता की प्रकाष्ठा तक पहुँचते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा लियो 14वें ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। बुधवारीय आम दर्शन समारोह से पहले संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन के संत पापा पॉल सस्तम हॉल के छोटे कमरे में नार्वे के लूथरन धर्माध्यक्षों से मुलाकात की। संत पापा ने उनका सहृदय स्वागत करते हुए कहा, मुझे आज सुबह रोम और यहाँ वाटिकन में आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है और मुझे उम्मीद है कि आपके पास शुरू के ख्रिस्तियों और शहीदों से जुड़ी अलग अलग पवित्र जगहों में जाने का समय होगा। हमारे प्रभु में आस्था की गवाही का यह स्थान हमेशा प्रेरणा का एक स्रोत बनी हुई है, जो हमें भी इसी तरह ईश्वर की महिमा और हमारे भाइयों एवं बहनों की भलाई के लिए अपना जीवन देने का साहस देती है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपने समय में मुश्किल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया एक खास तौर पर उथल पुथल वाले दौर से गुजर रही है। ऐसा लगता है कि लोगों के बीच दुश्मनी बढ़ रही है, जो न केवल अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों और विवादों में, जैसा कि आपने बताया, बल्कि अलग अलग देशों के अंदर भी साफ दिखती है। अक्सर राजनीतिक और सामाजिक बातचीत में कड़वाहट से पता चलता है। इस वजह से मेल मिलाप और भाईचारे के पक्के रास्ते खोजने के लिए मिलकर कोशिश करने की जरूरत है। एक सामान्य बपतिस्मा और साझा मिशन के आधार पर संत पापा ने शांति और न्याय को बढ़ावा देने की सेवा में हमेशा एक साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अंत में संत पापा ने शुरुआती शहीदों संत ओलाफ और संत सुन्नीवा को याद किया, जिनका जीवन ईश्वर और पड़ोसी को समर्पित था, जिसने लोगों को एक करने और दान की बदले वाली शक्ति का हमेशा गवाह बनने में मदद की। उन्होंने कहा, आइए हम ईश्वर का आशीर्वाद मांगे, ताकि ईश्वर अपनी असीम अच्छाई और प्रज्ञा से हमें भाई बहनों की तरह और भी सच्चे दिल से जीने में मदद करें और इस तरह हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए आम गवाही दे सकें। उधर बुधवारीय आमदर्शन समारोह के दौरान इटली के तीर्थ यात्रियों से बात करते हुए संत पापा लियो 14वें ने हाल ही में दृढ़करण संस्कार लिए हुए युवाओं से कहा, प्यारे युवाओं, दृढ़करण संस्कार में तुम्हें सबसे खूबसूरत तोहफा मिला है, पवित्र आत्मा। यह कोई छिपा कर रखने वाला खजाना नहीं है, बल्कि एक रोशनी है जिसे तुम्हें हर दिन चमकाना है। यह विश्वास भरी बात संत पापा लियो 14वें ने इटली के कियावरी धर्म प्रांत के दृढ़करण संस्कार प्राप्त युवाओं से कहा, जो अपने धर्माध्यक्ष के साथ संत पेत्रुस महागिरजा घर में उपस्थित थे। संत पापा ने नौजवानों, बीमारों और नए शादीशुदा जोड़ों को भी स्वागत किया। उन्होंने याद दिलाया कि गुरुवार और शुक्रवार को धर्म विधि कैलेंडर दो महान संतों, संत मोनिका और संत अगुस्टिन को याद करती है, जिनके बारे में उन्होंने कहा, वे धरती पर पारिवारिक रिश्तों में जुड़े थे और अब स्वर्ग में महिमा की उसी नियति से जुड़े हैं। उनका उदाहरण आप में से हर एक को सुसमाचार के सच की सही और जोशीली खोज के लिए प्रेरित करे, ताकि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी खुशी इसके गवाह बन सकें। पोलिश विश्वासियों का अभिवादन करते हुए संत पापा ने कहा, मैं पोलिश लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। मैं चेस्टोकोवा में इकट्ठा हुए लोगों के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़ता हूँ। पोलैंड की जसना गोरा प्रतिज्ञाएं, जिसे कार्डिनल स्टीफन ने अपनी जेल के दौरान तैयार किया था और जिसे आज 26 अगस्त को 70 साल बाद इसे फिर से शुरू किया गया है, संत पापा ने उनसे उस विरासत को बर्बाद न करने की अपील करते हुए कहा, इसमें शामिल समाज के नैतिक नवीनीकरण का प्रोग्राम, मानव जीवन की सुरक्षा, शादी और परिवार की देखभाल और बच्चों एवं युवाओं की शिक्षा के जरिए न्याय और भाईचारे की प्रतिबद्धता को प्रेरित करता रहे। उधर वाटिकन विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघेर मास्को के दौरे पर हैं। मंगलवार 25 अगस्त को मास्को में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि ऑफिस में हुई बैठक में वाटिकन सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघेर और रूसी संघ के विदेश मंत्री श्री सर्गेई लावरोव ने मुख्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एकमत होने वाले कई एरिया की पहचान की और रूसी संघ एवं वाटिकन के बीच बातचीत जारी रखने के महत्व पर सहमति जताई।
द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें रूस में कैथोलिक समुदाय से जुड़े मामले और रूस एवं यूक्रेन के बीच शांति का रास्ता शुरू करने के मकसद से मानवीय पहल शामिल थे। वाटिकन के प्रतिनिधि ने संत पापा लियो 14वें की रूस और यूक्रेन के बीच दुश्मनी खत्म करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन से असली बातचीत शुरू करने की अपील को याद किया। महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर ने कहा, वाटिकन का रुख साफ है, लड़ाई को मिलिट्री तरीकों से हल नहीं किया जा सकता, राजनीतिक और राजनयिक प्रक्रिया के लिए हालात बनाना जरूरी है। वाटिकन के अधिकारी ने रूस और यूक्रेन से खुलेपन और अच्छी भावना दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय एवं मानवीय कानून का सम्मान करने की भी अपील की, खासकर आम लोगों, संरचनाओं, घायलों और युद्धबंदियों के मामले में। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने रूस के साथ बातचीत के लिए वाटिकन के खुलेपन और शांति के लिए उनकी प्रतिबद्धता की तारीफ करते हुए कहा कि वह लड़ाई से जुड़े मानवीय मुद्दों पर सहयोग मजबूत करने की जरूरत पर वाटिकन से सहमत हैं। उधर यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख अफगान बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जो जानलेवा हो सकती है। यह आंकड़ा और भी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। देश में कुल 3.7 मिलियन बच्चे अत्यधिक दुबलेपन से पीड़ित हैं, जो दशकों से चल रहे युद्ध और 5 साल से तालिबान के नए कंट्रोल के कारण हैं। इस साल की शुरुआत से 5 लाख से ज्यादा बच्चे गंभीर दुबलेपन की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए हैं। यूनिसेफ अफगानिस्तान के डायरेक्टर ताजुद्दीन ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ रहे दबाव के बारे में बताया। देश के दक्षिणी हिस्से के कुछ इलाकों में अस्पताल हर उपलब्ध बेड पर 3 या 4 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का इलाज कर रहा है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।